श्रीमन्नभीष्टभटाखिलोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेक दयैक सिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तरधि